एक्स का एफ एम क्वांग खन गु छुपा के सेजिन ढेर तक मनी ते मोंग टांग ओ दिंग में हो जित तमंग गुच्छा गुजी छे का के राधु के कवे तु का खई सि पंगवा अकुए खई क्वा राधु के निमुरु या वनी तें सेवा पेन नेखा एफ एम तमासी दे के कवा वो लेंगे को तो चुंगा के कवा रेस ता है का के नावे के चुंगा ता कुछ दे के चिमा ओलंग जिच्छा कोंगा ये कन उसी से उसी दे किनिनो ओ कोला लेके चुहा कपू उजला पंग बा उसी दे कवा चिम माउ तुल के कन कव चुहा ना उसी दे कपू आहा ने थमो कोई प्रॉब्लम माउ ता मन मोचा ओ अमन मावा कपू उजला कोई कन के चुहा ले माइ दे के मैं कुम्से मावा नियखे के वा खसुन ओला अते जी के कोई ता चुहा मावा माइ दे कवा ओला कोन माम दे के कन उसी से ओला मजी चंग कवा जिला थमो कोई मासिन दे के किनिनो एके कोला ओ जुआ कव चिक इन फलिंग में पंगवा तेने ना सिंग के का नुंग मा नुंग का नुंग को कुल नय ओ कव हे आउ जिला का कव चिक ए कुम को तेने ना हाने प्रॉब्लम है ओ चिक इम दे चोंग मा ओला मजी चंग के सा को जी से काया के ओला नो को ना अली को अब्राहम मुतु तु को नो ओला मजी चंग उसा कव चिक को का के राधु कुसिरे कवे तो खई सी अकुए खई पोरा दुके नुमुरु या वने तें सेवा पेन नेख एफ एम अन तो दुगे औंगो ओलंग जिचा हंकुए सा गोजि सिगे कोन का दा कुसिरे का उ दं मै दगे दं गे कनु जि से तने ना सि दगे नो या कोन दे महे तने गु चुंगा दा सा गोजि गं कोन का के रादु कुए अले को अब्राहम नो तो दुगु नो ओलंग जिचा गोसा जिमा प्रोग्राम को ना dago sire kawe to kai se ko e kai po ra duke numuru ya woni ten sewa pen nexa fm on to duke ya au ngo la ngaji cha ang ko e sa ko ji se ngai te ko le m ten chong ba ang ko e sa ko ji se firin der ta ko mani te kan go supa mo ng ton ba ko e mo ng duke wa tol firi da ten ko chong ba da ng da sa ko ji se ga ko ng ta ke ra du ke kawe to kai si pang ba ko e kai po ra du ke numuru ya woni ten sewa pen neha FM ke mongo maso tendu tongo olang.